0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: Lipponia. Extreme energy drink.
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580303479 र 98481380।
3: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
4: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदै छ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
3: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
4: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
3: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
4: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
3: सम्पर्क नम्बर 081535717।
5: कानके समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो?
6: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्रमा जाइन, वहाँ त अनुभवी चिकित्सकको वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कानके परीक्षण हुइट ओत्रकेल कहाँ हो? वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ति रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजोइना, कान कम सुन्ना, कान दम्मा होइना बिरामी के उपचार और परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ति रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुईट वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता वो महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्ते बीटीई, सीआईसी, आरआईसी जैसी मशीन फे वहाँ मिलात।
5: ए वो सिद्ध हो कल से बुढ़ो हो वहाँ ले जाके उपचार करेल से वजह से सुनो से कहीं टा
6: एकदम।

0: समयमा उपचार कैलेसे उपचार सम्भव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगञ्ज छ फुलटेक्रा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके संचालक पूरण चौधरी सम्पर्क नम्बर 9848206697 9858023697 ओ 9804486697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हुई नियमित कानके जाँच गरी
1: खुशीके खबर हमार शहर नेपालगञ्जमा ढेर वर्षसे सेवा डेटी आयल नेपालगञ्ज नेशनल अस्पतालमा ढेर विशेषज्ञ डाक्टरनसे रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा ई अस्पतालम रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डाक्टरनसे ओपीडी सेवा देनाके संगे ढेर सेवा डेटी रलेक जानकारी कराइटी
0: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाँटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आइल बा
1: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो सम्बन्धी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराइदी
0: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081536465 9829408665 ओ 9842880465
2: यो कृष्ण सार एफएम
3: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: साजो।
1: अली बेटे, अली बेटे, अली, आलोक जल्दी करो, इसे अस्पताल ले चलते हैं।
0: नहीं शांति नहीं, लगता आज मेरे जाने का वक्त आ गया।
1: नहीं,
0: नहीं यार, ऐसा नहीं, नहीं हो सकता। हाँ यार बहन, अपने इस भाई को रागे नहीं बांधूंगी।

0: Pele Pania. Extreme energy drink.
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: फेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल फेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580304 र 98481380।
3: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल मा ले जाए।
4: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
3: अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
4: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
3: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
4: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खबर।
2: हाम्रै शहर नेपालगञ्जमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आइरहेको नेपालगञ्ज नेशनल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दैनिक रूपमा विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको छ। यस अस्पतालमा दैनिक रूपमा विभिन्न विशेषज्ञहरूद्वारा ओपिडी सेवा हुनुका साथै विभिन्न सेवाहरू भइरहेको जानकारी गराइन्छ।
3: हजुर, हाम्रो यहाँ सर्जरी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, प्रसूति तथा स्त्री रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, नसा तथा हड्डी रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, मस्तिष्क तथा मानसिक सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, छाला रोग सम्बन्धी उपचार, छाला रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, नाक कान घाँटी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, प्याथोलोजी ल्याब सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे तथा अन्य सम्पूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल का साथ ही प्रत्येक महीना को अंतिम शुक्रवार काठमाडौं मेडिसिटी अस्पताल बाट सुगर र थाइरोइड को उपचार का लागि डाक्टर सुमन बराल आउने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं।
2: नोट, यस अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरूद्वारा प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार निशुल्क ओपिडी सेवा हुनुका साथै जाँचहरूमा 20% विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
3: सम्पर्क नम्बर 081536465, 98239806665 र 98482804665। नेपालगञ्ज नेशनल अस्पताल, बीपी चौक, नेपालगञ्ज।
4: यो कृष्ण सार एफएम
5: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: यो कृष्ण सार एफएम
3: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: हो मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: साजो,
1: अली बेटे, अली बेटे, अली, आलोक जल्दी करो, इसे अस्पताल ले चलते हैं।
0: नहीं शांति नहीं, लगता, आज मेरे जाने का वक्त आ गया।
1: नहीं,
0: नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ यार, बहन, अपने इस भाई को रागे नहीं बांधूंगी।

0: हो मेगाहर्ट्ज़ कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी